फट जाती हैं। इसके बाद हल्का सा पिघलाने के अद्वार लागू करके ट्यूमर की रगों का ढांचा तबाह कर दिया जाता है, जिससे उसकी ग़िज़ा बंद हो जाती है। अपना काम मुकम्मल करने के बाद हमारा मुदाफियती निज़ाम वक्त के साथ साथ इस मुर्दा बाफ्त को खुद ब खुद साफ कर देता है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की उस असल और धमाकेदार जिद्दत की तरफ। ये अमल अब MRI मशीन के अंदर MRI इमेजिंग की लाइव निगरानी में किया जा सकता है। MRI स्कैनर इस अमल को स्क्रीन पर लाइव देखने की सहूलत फराहम करता है। इससे ये यकीनी बनता है कि मुंजमित करने की हुदूद बिल्कुल दुरुस्त हों और सेहतमंद बाफ्ते महफूज रहें। डॉक्टर अब बर्फ के गोले की हुदूद को ज्यादा वाज़े तौर पर देख सकते हैं और वो रीढ़ की हड्डी, आसाब, गुर्दे या जिगर जैसे हसास हिस्सों पर ज्यादा तहफ्फुज़ के साथ काम कर सकते हैं। सिडनी के लिवरपूल हॉस्पिटल ने मुल्क भर में पहला एडवांस्ड MRI गाइडेड क्रायो ओब्लिशन सिस्टम नस्ब करके उसका अवामी ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया ने हालिया दिनों में इस मौजू पर अपना नाम खूब रोशन किया है। सेहत के हुकाम का कहना है कि ये तरीका कार खास तौर पर इब्तदाई मरहले के गुर्दे और छाती के कैंसर और इसके साथ साथ हड्डियों, नरम बाफ्तों और जिगर के ट्यूमर में बेहतरीन नतायज दे रहा है। तो फिर इस टेक्नोलॉजी को रिवायती सर्जरी से अलग करने वाला सबसे बड़ा फायदा क्या है? यकीनन इसका मिनिमल इन्विजिव होना है, यानी जिस्म को कम से कम नुकसान पहुंचाने वाला तरीका होना। ना कोई बड़ा चाकू का निशान और ना ही दिनों तक रहने वाला दर्द। यह अमल आम तौर पर लोकल एनेस्थीजिया या हल्की बेहोशी के तहत तकरीबन 1 से 2 घंटे में मुकम्मल हो जाता है। मरीज उसी दिन अपने घर लौट सकता है और सिर्फ चंद दिनों में अपनी मामूल की जिंदगी पर वापस आ सकता है। खास तौर पर बड़ी उम्र के मरीजों के लिए जो भारी और बड़े ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये टेक्नोलॉजी गोया जिंदगी बचाने वाले एक पुल का काम करती है। ये सेहतमंद आज़ा की बाफ्तों को महफूज रखते हुए सिर्फ निशाने पर मौजूद ट्यूमर को ख़त्म करती है। मजीद ये कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक महदूद नहीं है। FDA समेत दुनिया के कई बड़े इदारों से मंजूरी हासिल करने वाला ये तरीक़ाकार यूरोपीय ममालिक, स्विट्ज़रलैंड और यहाँ तुर्की के अस्पतालों में भी कामयाबी से इस्तेमाल हो रहा है। तिब्बी दुनिया में यह जमा देने वाली लेकिन एक ही वक्त में हमारे दिलों को गरमाने वाली तरक्की इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मुस्तकबिल में कैंसर का इलाज बहुत ज्यादा बेदर्द और काबिल रसाई होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल खुदा हाफिज।